बड़े समन्वय पठित समिति मीटर के अनुसार विद्युत किसान फसल आंदोलन का प्रतिनिधि बीच मिति 2083/4 समझौता अनुमोदन करने समझौता का उल्लेख भाई मीटर प्राइस संग संबंधित फर्जी लिखित आज की मिति अवैध घोषणा करने आर्थिक 2083 को तथा 18 को

बताया कि पुरुष साफ से स्वप्न के सजीव के रूप फिर वो विराट सकता है जो कोई यहाँ ऐसा था कि जन रास्ते यहाँ सिटी टूर में रास्ता नहीं है दर्शक हो

इस विषय को फैले। गुठी संस्थान ने रिक्त प्रशासक पद में शैलेन्द्र राज नियुक्त करने निर्णय जानकारी दिनुभयो। बैठक में पर्यटन क्षेत्र को विकास और अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल को प्रभावकारी संचालन का लागि सरकार ने विशेष सहूलियत को घोषणा गरेको छ। जस अंतर्गत पोखरा और गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रीय विमानस्थलबाट हुने नियमित अंतरराष्ट्रीय हवाई उड़ान में 2085 साल भन्दा मसान्त सम्म का लागि पार्किंग, लैंडिंग और नेभिगेशन शुल्क पूर्ण रूप में छ।

संचालन तथा मंत्री परिषद को निर्णय विशेष स्वयं अदालत में अध्यक्ष नियुक्त तथा अंतर्राष्ट्रीय विमान स्थल में शुल्क छूट को घोषणा अन्य गृह सात बजे को नेपाली भाषा प्रमुख सन्देश यति नै बेलुका 5 बजे मौसम बुलेटिन लिएर आउनेछौ।

0: обычно балансов анатоцингов имеют на iron calcium хлорид, что страдает сладчик прибора.
1: रेडियो दुर्भावायतपुर को सहकारी व स्वास्थ्य कार्य भोरतिया से जनहित में कार्य सर्विस है कमी सर
0: आओ आओ कमी सर ना मदद की करो पसंद तो समस्या का नहीं
1: कुछ भी मैं स्वास्थ्य कार्य के तो मेरा पकड़े थे और मैं से खुला प्रयास करूं ऐसा क्या शालन होता आशा करूं आशा करूं कि कपड़े ना दबा मैं जानता हूं
0: कौन सा पुराना सुनहरा था किसी ने बोला
1: इतने दिन बाद
0: इतिहास में यह बात हुआ सबसे और उस मस्त सुनहरे को कब से पहला समय नहीं दिखा तब हम मस्त की बात हम हर किस पसंद कर कहानी को लेकिन हम मुला सकता हूँ मुला के पुराना सकता हूँ ना हम तरह तरह को कहानी भी
1: हाँ
0: मस्त पुराना सुनहरा आप आ रहे हैं सब और मस्त की पुराना सकते जांच में मुनी मस्त है बात � अवश्य मूलावस्थाइनी संचालक मूल सब सको।

पचास सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडेमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल

0: और अपने चीजें लगी ली, हमारे सब लोग कर ली, मन किसी में लगे ना हो,
1: ध्यान तो लगाई किया था, वो मोरो का शुक्र कर दिया।
2: Thank you.

0: चाहिए ना, वो कल निकाल के टीचर के लिए सिर्फ करवाइए, टीचर के बढ़िया बात तो ये काम में प्रतिबंधित चीज के बाद लेकिन अंदर कई काम से की जाना जड़ी बूटी फिर रस्ते की अंदर फसे हो ये काम से की सड़की काम सड़की खाने से झाड़ा रुपए और एक योजना पर रोटी के दौरान तत्व बूट तत्व योजना क्या हो कि योजना खाने से रस्ते के दौरान वो समय में पहले तो यहाँ की अंदर से क्या कुछ करने के अंदर से बहुत परेशान लोग जड़ी बूटी के रूप में तो प्रयोग करने ऊपर ये और ऊपर जो मतलब खुला के ऊपर ही जो सर्दी गजरे के ऊपर खुला मन क्या करे कि डेवलप है उसका बेहतर मान के प्रवर्तक का काम करे सुखा के तब पूरा का बुरे फिर बहुत मिक्स है लेकिन आज वो सब चीज रोबट्टा उन्होंने प्रयोग न कर रही है
1: स्थानीय तथा प्रवासी चेहरा अठा से प्रकार का छ प्रकार का गुंडा पांच प्रकार का सर्वर एक प्रकार का कृष्ण और 21 प्रकार का वनस्पति पाइन जो प्राकृतिक संपदा को संरक्षण करते परंपरा में निरंतरता देना सके।

निगरान के थी हम दरकार है का विगत 10 बरस का बच्ची मुर्गी छिंद्री पालन तरकारी और क्या खेती करती रही और कई बार से लोग पूर्व बताया और मैं खेती में से थी मैं जानकारी नहीं पाई मैं ड्रैगन खेती में लग लग वहाँ पर कई बार था विगत 3 बरस से ड्रैगन खेती है निरंतरता दे दे रख वो ये खेती में से मैं आमदनी कर लग वहाँ खुशी व्यक्त कर रहा था। वर्धा जिला का बढ़ा ताल प्राकृतिक तलाको इतना भर फूलों को कमल का फूला वो हरी पटेले बढ़िया तला का सुंदर ठपला कमल का पटिया सुबह पूजा आचार भाज कर तथा मेन धार्मिक अनुष्ठान में दर्शन आगे से दूर दूर से बने पटिया टूला टूला पूजा कर रहा था। नेपाली में कमल का फूला से बैठा

kecilan dia kok kayak kaki berasa di pan in harga 15 rupiah berapa ke pas tu ni dia kerja antara mereka so banyak kaki bersama sebagai jual jual it harga 18 rupiah ni dia juga sebagai jual ni dia pun sudah ada kerang sama kan ni dia berharga ko dia kaki berasa kecilan ni dia agak bersama tu dia nama 10.81% Eko, api kolon tertarik kasi bayasnya di karbo, satu terhadap apa pasti ini akhirnya di bahag terlihat. Sebenarnya, Nepal waktu semuruk si, ada tisu muruk si, ada dua puluh bahagian yang pertama ini akhirnya keluar. Kanun lain tetap sanksi manusia mencari hasil kalau kanun nirmal tetap sudah bersahabat sahur mereka untuk istri semiti dan kerja untuk istri kanun tetap sudah semiti ke orang cik kanun lain tetap sanksi manusia mencari sebutan kebutuhan bahan baki semiti mah bisa terbantu bahan yang dapat daripada susun kata cik sebut sahaja mukia jistar perdana menteri dalam menteri pusat kalau kanun saja semiti mentari kesat नेपाल कानून आयोग का सचिव तथा कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्रालय का सचिव सदस्य सचिव रहने वाला समिति प्रस्तावित कानून का पुनरावलोकन संशोधन खारिजी संहिताकरण तथा संविधान बमोजिम आवश्यक लोग कानून निर्माण के लिए आवश्यक सिफारिश बनाएगा मंत्रालय की निर्णय मार्फत कानून निर्माण तथा सुधारण व्यवस्थित समृद्ध समय समय बदला और प्रभाव का निपुणी की संविधान अंकुर जनमाइती वो समसामयिक कानून प्रणाली निर्माण करना लक्ष्य है बार कानून नए तथा संसदीय मामले में भी सुविधा को अंकुर में ऐसे आर्थिक और दूसरे अतिरिक्त शिक्षण राशि में कानून निर्माण तथा सुधार प्रस्ताव को सुनने के लिए बार सुधार प्रस्ताव को सुनने के लिए बार राष्ट्रीय समाचार के संग हमारे संदेश का समय मिला जाता है हमारे संदेश को देने से पहले हम मुख्यमंत्री संदेश शेयर करें भारतीय महिला कोषा दुर्निशान भारत विभाग का नई टीम सेविंग तौर तरह से सुना कार्यक्रम निर्देशित के राष्ट्रीय परिचय पत्र स्वाध्याय और पुलिस की भारत का संघ भारतीय ट्रेवल प्रमोशन मदर कमाहुन नेपाल का प्रदेश का व्यापार 24 खरब नगर 3 पर इन खबरों पर निर्यात और कानून निर्माण तथा सुधार पर सबसे बनाए प्रेस परिसमिति गठन अब तक हमारे संदेश द्वारा कल बिहार सरकार ने नेपाली भाषा का हम संदेश देने के बाद इन तब से प्राप्त अध्यक्ष अच्छा का सबको संदेश प्राप्त करने का विषम पर

0: பர்சன் நான் டாபிக்கு பேசி பர்ச்சேஸ் திண்ணை ஹரியும் பண்ணி போட்டு பண்ணில முறை பார்க்க சேத்தா கொசா தப்பா தேக்கின கதை கசன் கிருஷி பிராவிதி கொசா இது ரோக் நபை வாதாரன் அனுகூல नहुँदा फैलिने किरा हो यसले धानको पातको हरियो भाग खाइदिने भएकाले बिरुवाले पर्याप्त खाना बनाउन सक्दैनन्। समयमै कीटनाशक विषालि प्रयोग गरेमा नयाँ भन्दा पलाउने र उत्पादनमा ठूलो असर नपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। सिआइएनसँग कुरा गर्दै किट रोग विज्ञ डाक्टर सुदीप उपाध्यायले भन्नुभयो,
1: यसको पनि निकै महत्वपूर्ण किरा छ, यसको नोक्सानी गएको वर्षदेखि बढेको क्रममा देखिन्छ। र यो किरा अहिले तपाईँलाई अहिले धेरै धान चाहिँ धेरै ठुलो अवस्थाको पुगिसक्यो त्यहाँ छैन, यति बेला हामीले राम्ररी खेत बनाउनु भयो भने किराको नोक्सानी कति छ यसको राम्ररी आक्रमण भएर हामीले यसको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। हामी दिशा थियो त्यो घुलनशील हुन्छ पानीमा, प्रति ग्राम पर लिटर पानीको दर एक ग्राम

0: 사가버릇을이라는거예요사अब उत्तर सांस्कृतिक संपदा विद्युत मार समुदाय का अधिकार सुनिश्चित करना व्यक्ति हल को जोर
1: मौखिक पठा वालों वाला ठीक ही होता है
0: क्या करें इस पर बोलते हैं
1: लिस्टिंग को प्रोसेसिंग अप्रूवल कमिटी तो मैं यो आई रही है क्या करा हो अप्रूवल कमिटी में ऐसे समावेशीकरण तो होना पड़ता है हम सब तेरा मेरे व्यक्तिगत तेरे पर पुष्ट है कि मैंने समुदाय का अधिकार समेत सांस्कृतिक संपदा विधेयक पर संशोधन करने सांसदों को प्रतिबद्धता विशेष श्रृंखला एवं सांसद लगाय का सामग्री बांटने से सीआईएन को साझा खबर सुनने का दौरा

0: नहीं एक हिसाब से सौ फोटो सचिव वो बिहार से कर रहे जब कोई यहाँ ऐसा था कि जम रास्ता यहाँ सिटी टॉप में रास्ता रही है बढ़िया फिल्म हो बहुत बढ़िया चीज हो
1: रेडियो
2: साथ में कहा

0: तपाईँ सन्तुले खाना खाए व्यायाम शब्द गरी
1: धुना पानी
0: नदी नामी तर भन दिए जन्तरी आज

खाना के लिए रहता बिखरा हो बीवी हो तो सटी के दिन लगा था नेपाल में पाँच जना बिखरा छ अपना विषय हो एक अच्छा पढ़ाई था तो खास के मासिक समय का कभी पर बैठे से कि कटे से निकाय की क्या है मैं मतलब पाँच छह दिन में जहाँ की निकल रहा है तो खास खाए से निकल रहा है शेर आपको हो सकता है और मैं खाए घूम तो बड़ा निशान मेरी तो Thank you.

संपत्ति में कहा था उनके समय एक करोड़ पाउंड भन्दा बड़ी मूल्य का संपत्ति में 2% संपत्ति कर ले समर्थन हो यूरोपीय संघ ईयू ने प्रतिस्पर्धा संबंधी नियम को उल्लंघन मामला में

नेता मामिला का विज्ञ प्राध्यापक पीताम्बर शर्मा। अब अंतिम में एउटा अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंग।

0: साथ के सूट में पैसा जमा किया है वो बता चुके हैं। जो कोई यहाँ ऐसा है कि जब रास्ता यहाँ सिटी पर भी रास्ता है कि मैं ये चीज हूँ बहुत बढ़िया चीज हूँ बहुत बताया
1: लेकिन गुजारा है कि पुराना पेटा सुना साथ में कहा

चीफ कॉर्पोरेट सैनिकों को पूरा खाना ने बच्चा खाना तंदुरुस्त पकड़े पूरा खाना सब जगह दुई दिवस समय इस संस्थान का रिखा।

0: उद्घाटन कर सहकारिता स्वास्थ्य कार्यालय पर्दिया के जनहित में जारी संदेश
1: आवाज।